0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। यह है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप

0: कहती हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य परोसी परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे, या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते। उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय। उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित, हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए। उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे। उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी, उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी। वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी, वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है। वो नाता बौद्धिक नहीं है। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर मैं कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिस लिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हां कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है, जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा, और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल ना खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डवाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है। वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न, विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं। जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का। जिससे जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिससे जी भरे ही ना वही प्रेम है। भर भर के ना भरे, बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है। समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते, और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है। आया नहीं गया नहीं, और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे, कम रहे, कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम ना बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो। साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है। परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए। क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया। जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं, बुद्धि जल्दी उब जाती, बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं। शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है, हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है, तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे शून्य को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे, मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी।

न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। न फलसफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं, यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा, चिकित्सा से मेरा मोह नहीं है, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए, ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है, और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है, यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है, सिद्धांत कुछ हैं जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई नेचुरोपैथी में, पूरे समय में मौजूद था जब यह घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु संन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है, और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही,
उनको समझाना मुश्किल था। फिर पत्नी पागल भी हुई मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा भी मिलने को तैयार हूं तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो, भी गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद से ही चलो, धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना, जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसु का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसु की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ तो स्वभावतः वो उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसु की उंगली लाओसु की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं? चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी। अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता है। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है।
लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों, चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही हों। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में, जो भी रंगीन मिला, माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको, बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे। बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं, इनको अगर हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते। अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा, कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं। अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है। अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते हैं। अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को। जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए।
इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है? सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की, तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना। स्वाभाविक है, वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या? वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए और पहले से ज्यादा मजे में हो गए, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना, तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं, विचार का कोई भरोसा? विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है, मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा, ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी। रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया, मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति

0: एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म। सांस तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस शास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती। वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया। विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से। हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? तो बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे न जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूं इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

होएगी मेरी, ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना और जब कबाड़ खोल देने मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सहसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है। ये भोले पाच बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहंदे ने रब नू ढूंढिया नहीं लभ सकदे तुसी, ओदी कृपा हुंदी है वो मिलदा है, वो किदां कहो कबीर भगत कर पाया भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया भोले पाच लेना पैंदा भोले पाव च, चलाकियां चतराइयां नहीं भोलिया पा महाराज जी तुसी मैनूं मिलना, मैनूं तां रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनूं तां टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां कित्थे मिलां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं। तो ये देखो सारे, आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए था। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों उदास मन? क्यों अंदरों रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? वो बिछड़िया हुआ, बहुत जन्म बिछड़े थे मन। नहीं हे प्रभु, बिछड़े हो तुम,

करने वास्ते दाता तो ही मैंने अपने चरणों च बुला लिया, मुझे मिलने के लिए मेरी औकात क्या है मैं तुमसे मिल सकूं प्रभु, ये तेरी कृपा है वड्याई, कौन आनक सब तेरी वड्याई, मैनू कौन जानता, ये तू ही मैनू बुलाया, संगत बख्शिश की थी। कहिंदे ने संगत विच रब मिलदा, जिहड़े बंदे दी रोज संगत होण लग पैंदी है उहनू बार बार संगत मिलदी है, ओ इन्ना वडभागी जी बन जांदा, एक दिन ओ परमात्मा नू जाके मिल लैंदा। इदां ही रब नू सारी दुनिया मिली है, वड्डे वड्डे पैगंबर नबी अवतार पहला उन्होंने लोगों ने संगतां कीतियां, फिर एक दिन परमात्मा दे विच विचर गए। पुछो तो सही, इतिहास ते खोल के वेखो, कोई होर तरीका ही नहीं परमात्मा नू मिलन दा।

कोई नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तो जो घर जाना तुहाडे घर भर जाने रहमतां नाल, क्यों तो ही मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना है।

सुनन नाल चार पौड़ियां गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने सुनन ते लिखिया ने जपजी साहब जी दे अंदर। क्यों? एक पौड़ी कहती है सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनन नाल किनू सुनन नाल? उस पार ब्रह्म परमात्मा ने उरे बारे गल करन नाल, रब परमात्मा हरी वाहिगुरु ए उस मालक दी गल करन नाल सुनिए सत संतोख ज्ञान। संतोख आवेगा, ज्ञान आवेगा, सुख आवेगा। सुनिए 68 का इशनान, 68 तीर्थ दा फल मिलेगा। सुनन नाल सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जिहड़े लोग पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ नहीं पढ़ सकते, उन्होंने पढ़न वाला मान मिलेगा। नहीं ने पढ़ते कई बार वह भी मान मिलेगा सुनन नाल। पढ़न तो भी चंगा सुनना है। सुनिए लागे सहज ध्यान, ध्यान लगन लग पे। अख बंद करोगे रब नाल जुड़ जाओगे सुनन नाल। हुण सुनी रहे हो तुसी, जुड़े कि नहीं जुड़े? ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रहीआं। जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा, फिर अपने नाल जोड़ लैंदा। सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नास। सुनन नाल दुख मुकदे ने, पाप भी मुकदे ने। किन्नू सुनना? किन्नू सुनना? उस पार ब्रह्म बारे जिथे उहदी गल हो रही होवे, जिथे रब की कथा हो रही होवे, जिथे रब की गलबात हो रही होवे, उथे सुनना। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की, मेरे हरी की कोई गलत करे

उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

0: मेरे नाल नाल जपो बस
1: प्रीतम के
0: सारे बोलो और सुनो भी देखना आज तुसी बोल के बाणी नू नाल अपने कन्ना नाल सुनो मैं की कह रहा वो बाणी अंदर दाखल हुंदी कि नहीं हुंदी देखना मेरा एक अर्ज है मेरी बेनती

दर्शना दे नाल मन शांत होएगा, शरीर शांत होएगा और कुछ नहीं। हे प्रभु दर्शन दवो, दर्शन दवो प्रभु, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात रखी न्याई, रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जी, तेरे दर्शना तो बिना गुजारा नहीं होना। दर्शन दवो गल ही तां बननी, ते दर्शन कदी ना कदी दवेगा। अज भुख पैदा करांगे कल वो भुख पूरी होवेगी, साचे नाम की लगे भुख। फिर महाराज जी कहिंदे ने साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाईआं। इहो जिहा नाम है, बस एक बार वस गया सारियां भुखां शांत हो गईआं, सब भुखां भी मिट गईआं।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब, कैसे आपके हालचाल, कैसे आपके मिजाज। एक छोटा सा कॉल कर आप मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल, हमसे हमारे हालचाल पूछ सकते हैं। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, 120-40-60-205। एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर देते, यानी कि रिपीट कर देता हूँ, 120-40-60-205 के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in के जरिए मेल जोल के जरिए मेल बढ़ा सकते हैं, यानी कि मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। फिलहाल ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ इनकी शुरुआत करते हैं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मौसम के मिजाज के बारे में, बातें होंगी ट्रैफिक अपडेट के बारे में। अजय वाह, एक भी फंबल नहीं, गुड जॉब। हंस रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वन एंड ओनली सुरुशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
3: मैं तो हुई नहीं,
2: इसके बारे में बात करेंगे, मेरे साथ कौन है बताऊंगा जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, केवल सुरुशाता 90.8 FM। गुड मॉर्निंग।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:14 हो चुके हैं, 9 तारीख है। और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज की तरह यही दुआ, यही प्रार्थना कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल आज बुधवार का दिन, आगे क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज ही हाँ, लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल की शिकायत है, अगर कोई व्यक्ति स्कूल, कॉलेज या आपके ऑफिस में ऐसा मिल जाता है तो कृपया दूरी बनाकर रखें, यारी दोस्ती अपनी जगह और बीमारी अपनी जगह। आज ही, ये क्या था ये, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलिए, मौसम की अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि इस वक्त ग्रेटर नोएडा में आज का जो मौसम है मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने के चांसेस ज्यादा है, और जिसमें बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आज आप खुले में टेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसम का जो मिजाज यानी कि टेम्परेचर, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, और जबकि न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आसमान की जो स्थिति है, दिल्ली एनसीआर में दिन भर धूप खिली रहने के चांसेस है और बीच बीच में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें यानी कि उमस की, हवा में नमी अधिक रहने की वजह से उमस भरी गर्मी महसूस आप लोगों को हो सकती है। IMD यानी कि मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर के बाद NCR में एक बार फिर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बन सकती है। आए हाय, क्या बात है, रुलाओगे, बहुत ही खूबसूरत गाना। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, गाड़ी पूरे होशो आवाज में चलाएगा। अगर आप गाड़ी में नहीं सुन रहे हैं तो उतना ही वॉल्यूम रखेगा ताकि आप अच्छी तरीके से इस गाने को एंजॉय कर पाए, सामने वाला भी सुन पाए, उसको अच्छा लगे, थोड़ा सा वॉल्यूम करेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा वॉल्यूम कर सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको खुद दिक्कत परेशानी हो और सामने वाले को भी दिक्कत परेशानी हो सकती है और आपके कानों को भी दिक्कत हो सकती है। ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। इस गाने को बस फील करेगा। आते फसल जब गाते हैं दिल से तो आफत मचा देते हैं। आदत फ्रॉम द मूवी कलयुग। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। ब्रेक के उस पार बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: भाई जब हम छोटे थे तो अक्सर कहा करते थे कि ज्यादा मत बनिया कर, ज्यादा बॉस बन रहा है। अक्सर कुछ ऐसा होता था ना। चलिए, हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी के रास्ते सरल सुगम आसान बनाई ताकि आपकी जो मंजिल है बेहद करीब होती हुई नजर आए। और जिस राह आप चल रहे हैं, जिस सफर में आपके साथ कोई अगर हम सफर है, तो मुझे लगता है कि वो सफर कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, चेचे में ज्यादा होती है। बहादुर ऐसा सोचते, मैं ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग मेरी जैसे सोचते हैं, कुछ लोग तुम्हारी जैसे सोचते हैं, और सोच का फर्क है। सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सोच के बारे में हम सोच कर ये परेशान हो जाते हैं कि ये सोच आखिर है क्यों। ये क्या था? वाह वाह बोलो बेटा, वाह वाह
2: वाह वाह वाह वाह।
1: और आगे बोलूं? नहीं, बाद में। चलिए, ब्रेक पर हमने बात करने का एक वादा किया था कि ट्रैफिक के अपडेट्स के बारे में बातें करेंगे, ग्रेटर नोएडा के आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य मेले की वजह से स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है ग्रेटर नोएडा में, और ये बहुत ही खास मेला होता है, ऐतिहासिक मेला होता है, और इस वजह से भारी भीड़ को देखते हुए आज ग्रेटर नोएडा के स्कूल्स में छुट्टी कर दी है। और इसके अलावा जो प्रशासन है ट्रैफिक और भीड़ को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। जी हाँ, मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूँ कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, और मेले के आसपास का जो मेन मार्ग है वहां पर वाहनों का अधिक दबाव बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और इसके अलावा जल भराव की अगर हम बात करें तो वैसे बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे जो स्पॉट हैं उनको फाइंड आउट किया गया है कि कुलेसरा, हिंडन पुल, एक मूर्ति, गोल चक्कर, सूरजपुर, इस तरीके से 53 स्पॉट को फाइंड आउट किया गया है जहां तैयार रहने के लिए कहा गया है, और अतिरिक्त एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
3: ओनली ऑन टिप्स ऑफिशियल, सो लेट्स एंजॉय इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ 9:27।

नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: अर्थात इस लाइन का मतलब मकसद यही है कि ये जो धरा है, ये जो वसुंधरा है, एक परिवार है और शारदा परिवार में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशाबदीद, खैर मकदम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गगन आपके साथ और ईश्वर से हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। लेकिन अगर हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता। यानी कि अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अच्छा खान पान, अच्छी सोच, अच्छी निंद्रा। और ट्रैफिक की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर ऑन रोड जब आप चलते हैं तो छोटी छोटी घटनाएं बड़ी बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाती है। यानी कि कभी कभी हमें नदारत यानी कि मुंह फेर लेना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि ऑन रोड लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये छोटी छोटी बातों को नदारद करेगा, भूल जाएगा। ट्रैफिक की बात निकल कर ये सामने आ रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स समिट 2026 होने जा रहा है 11 से लेकर 13 सितंबर को। और इन सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है, जो तैयारियां हैं, माशाल्लाह बहुत वो मुस्तैद हैं और तैयारियां पूरी यूं कहें कि अपडेटेड है। सुनने में आ रहा है कि मथुरा रोड और तिलक मार्ग, यहाँ यातायात पर कड़ा नियंत्रण रहने वाला है। और ITU की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र में जो भारी कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके गुजरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, पाबंदी रहेगी। और जो वैकल्पिक मार्ग हैं, जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि जनपथ, अशोक रोड, फिरोज शाह रोड, सरदार पटेल मार्ग, अकबर रोड और पुराना किला रोड, इस तरीके के VVIP कॉरिडोर पर रिहर्सल के दौरान पाबंदियां लागू रहेंगी।
3: और दिल्ली में सिर्फ 11 तारीख की छुट्टी है, हाँ 12-13 को मिल रही है, तो इसीलिए लोगों का फिर से वीकेंड सोमवार को
2: तो आना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत छुट्टी कर देंगे।
3: ब्यूटीफुल
2: नहीं ब्यूटीफुल
3: हाँ ब्यूटीफुल ट्रैक
2: श्रृंगार।

सिर्फ सुरुशारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं अगर आपके साथ सिर्फ सुरुशारदा 90.8 एफएम पर। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई आपका इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

बिल्कुल आपने सही कहा कि यार मेरा सोना सोना, आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, यही मेरी दिली दुआ है, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और सुनो शारदा 90.8 एफएम की घड़ी में बज चुके हैं 9:43 हो चुके हैं, 9 तारीख है। गुड मॉर्निंग। सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना कई वजहों से याद किया जाता है। सितंबर का महीना अपने आप में खास होता है। जी हाँ, पोषण का जब जिक्र होता है तो खाने पीने की बातें होती हैं, हेल्थ की बातें होती हैं, और सच बात है कि जो कहा जाता है अगर आप वो सारी चीजें ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि खाने पीने में हरी साग सब्जी आप खाइए, घी दूध दही मक्खन, आए है माशाल्लाह, सारी चीजें अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, है ना। और जिक्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं खनिज पदार्थों का, जिक्र होता है पोषण माह का। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज 9वां राष्ट्रीय पोषण माह औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये एक देशव्यापी बहुत बड़ा अभियान है और इसकी शुरुआत आज से लेकर 8 अक्टूबर 2026 तक ये चलेगा। वाराणसी इसका लॉन्च इवेंट है और वहाँ पर जो बाल विकास मंत्री जी हैं अन्नपूर्णा देवी जी हैं, साथ ही साथ वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, और इस बार की जो थीम है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, बैलेंस डाइट, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और कहते भी है जैसा खाएंगे हम अन वैसा बनेगा हमारा मन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग। ओले ओले, अरे बारिश नहीं हो रही, नहीं ये गाना है, गाना अच्छा आने दो।

0: दिल की फीलिंग्स है और दिल की फीलिंग्स दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: अरे हमारे दिल तक भी पहुंचाओ।
0: आई लव यू
1: 2, 3, 4। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। प्यार करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखिए। और कुछ बोलूं बेटा?
0: नहीं नहीं, तुम पानी पियो, ये भी सही है। चलिए आगे बात करते हैं कि ग्रेटर नोएडा के आसपास क्या खास हो रहा है, ये भी जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर के अपडेट्स तो हम आपको देते ही रहते हैं, नेशनल खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। ग्रेटर नोएडा में आसपास निकलकर ये बातें सामने आ रही कि ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब से जेवर एयरपोर्ट तक बनने जा रहा है 6 लेन का एलिवेटेड रोड। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रेलवे लाइन से भी इसका कनेक्शन होगा, इससे कनेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर रोड, और नोएडा एयरपोर्ट के आसपास बनाए जाएंगे गेस्ट हाउस। कहां कहां जमीन देने की तैयारी है इसके बारे में भी बहुत सारी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। तो कहने का आशय यही है कि ग्रेटर नोएडा बदल रहा है।
1: हाँ बदल रहा है, सही कही, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया।
0: इशारा यह है कि ग्रीनरी को जब हम देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, तो बाहर से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं, लेकिन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ग्रेटर नोएडा को साफ सुथरा रखें। फर्क क्या रहेगा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में, है ना? वही ट्रैफिक, वही भीड़ भाड़, वही लोग, वही गंदगी, ये तो नहीं है ना ग्रेटर नोएडा।
1: शाबाश, कितनी अच्छी बात बोली सही सलीके से तरीके से।
0: तो हमें साफ सुथरा बनाकर रखना है, ट्रैफिक मुक्त रखना है, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। शायद ये ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती है, यही पहचान है। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम। वक्त का इशारा, मैं होता 9:11, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का, आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। 120 40 60 205 पर कॉल करके बता सकते हैं कि कैसा लगता है प्रोग्राम। और इसके अलावा सुरशादा 90.8 एफएम का फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, वहां जाकर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: जान है तो जहान है, अक्सर ये लाइनें हमने सुनी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में हो माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। इसी प्रकार के कई सारे सुख बताए गए। तो कहने का आशय यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है। नमस्कार, सुरुशारदा 90.8 FM पर मैं हूं गगन आपके साथ और कार्यक्रम है रेडियो ओपीडी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें होती हैं, हेल्थ की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं और यही सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा, डाइटिशियन शारदा अस्पताल से। हम बातें करेंगे पोषण के बारे में, कुपोषण के बारे में, सुपोषण के बारे में, बहुत सारी बातें होंगी। तो डॉक्टर पूजा, आपका सुरुशारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू गगन।
7: कैसे हैं आप मैम और कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर?
8: मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा।
7: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच
8: फॉर इनवाइट मी।
7: मैं तो कहूंगा कि आपने हमें समय दिया, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
8: थैंक यू।
7: सो लिसनर्स, जिस तरीके से हमने शुरुआत की है कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 मार्च 2018 से इसकी अनाउंसमेंट की थी कि सितंबर का महीना पोषण का महीना हम समर्पित करेंगे, इसी संबंध में बहुत सारे कार्यक्रम समय दर समय और होते रहते हैं। तो सबसे पहले जहन में सवाल ये आता है कि पोषण आखिर क्या है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे?
8: जैसे कि गगन, हम जानते हैं कि हर किसी को अपनी लाइफ में सुचारू रहने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसी एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं? हम जो भी खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं हम, वो ही एक मतलब हमारा प्रॉपर एक न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम पोषण भी कहते हैं।
7: बैलेंस डाइट का आपने जिक्र किया, तो यानी कि सवाल एक और पैदा होता है डॉक्टर कि वो बैलेंस डाइट क्या होती है?
8: बैलेंस डाइट जैसे कि गगन कह सकते हैं कि आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इसके अलावा आपके वाटर और डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीजें अगर आपके खाने में है तो उसे एक संतुलित आहार कहा जा सकता है।
7: वेरी गुड, वेरी गुड। सो लिसनर, ये जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो हमें बातें बता रहे हैं कि पोषण क्या है, इसके बारे में बातें हुई, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं कि संतुलित आहार क्या है, वो भी डॉक्टर साहब आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की आप बात कर रही हैं, विटामिन्स की बात कर रही हैं, मिनरल्स की बात कर रही हैं, तो ये जो सोर्स हैं डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो कौन कौन से सोर्स से हमें मिलते हैं।
8: जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, या आपके सीरियल्स है, मिलेट्स है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका दलिया है, गेहूं है, आपका राई है, बाजरा है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप स्टार्च ले लो तो पोटैटो है, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसके अलावा जैसे प्रोटीन है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग है, आपका नॉनवेज प्रोटीन के लिए आता है, जैसे कि आपका हो सकता है आपका चिकन है, मटन है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन देती हैं। इसी तरीके से फैटी, हमारा मतलब हेल्दी फैट रहता है, जिसमें हमारे नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपका हेल्दी फैट में आता है।
7: जी, चूंकि यहाँ पर एक वक्त हो चुका है ब्रेक का, डॉक्टर साहब से जो बातों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। डॉक्टर साहब, होता क्या है कि जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और जिस तनाव की वजह से हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरती हैं कि जब तनाव होता है तो म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आपके कोई एक गाना जो दिल के आसपास रहता हो, वो गाना हम आपके लिए, आपके श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से सुनवाना चाहते हैं, बहुत पसंदीदा गाना हो जो अक्सर गाते हो, गुनगुनाते हो। चलिए, डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया, कोई मुस्कुराने वाला गाना सुना दीजिए।
8: हाँ, जिससे मुझे सुनने वाले लोग भी खुश हो जाएं।
7: क्या बात है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये गाना हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ और आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़ी हुई है, आहार विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन डॉक्टर पूजा शारदा अस्पताल से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए। सच बात तो यह है कि दिलों को जीता जा सकता है जब आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। लोग अक्सर आपसे पूछेंगे कि आपकी सेहत का राज क्या है, किस तरीके से आप हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज कौन कौन सी करते हैं, क्योंकि जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है, आपका काम करने का जो तरीका है वो बड़ा ही अच्छा होता चला जाता है, यानी कि अनुशासन भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये सारी बातें आहार के संबंध में, पोषण के संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पूजा, शारदा अस्पताल से हैं आप, और आप आहार विशेषज्ञ जिसे हम कहते हैं डाइटिशियन है। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ मिनरल्स की बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, उससे आगे थोड़ा हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जिससे आप कहें कि ये बातें गगन हमसे छूट चुकी थी पहले भाग में।
1: यस, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, हमें प्रोटीन फैट कहाँ से मिलता है, उसी तरीके से हमारे डेली रूटीन में विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए जो हमें फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं, तो वो भी हमें अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए। जैसे कि हमें पर डे दिन में 2 बार कम से कम फ्रूट्स लेने चाहिए। इसी तरीके से खाने में भी हम सैलेड लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि फ्रूट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए,
1: और कोशिश करें कि हम जितना कलरफुल फ्रूट्स या कलरफुल वेजिटेबल्स को अपने लिए लेंगे तो उतनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में आएंगे, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं।
0: ठीक है, सवाल एक ये भी आता है कि जो बिल्कुल लेमैन है, जो आम इंसान है, जो सिर्फ 2 वक्त का जो खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, आपने सही कहा कि मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि फ्रूट्स का भी एक अपना रोल है, लेकिन वो फूड फल से वो वंचित रह जाते हैं, खाना ही बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एक विकल्प हो सकता है कि आप ये खान पान करेंगे, अपनी जिंदगी में खाना खाएंगे तो कुछ आप हेल्दी रहेंगे।
1: गगन, जैसे कि रहता है ना, हर खाने में अपना एक, हर चीज में अपना एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। जैसे कि अगर उनके पास है तो हम दलिया है, दलिया में भी फाइबर रहता है, हम दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा जैगरी गुड़ होता है हमारा, हम वो भी रूटीन में ले सकते हैं, आई थिंक वो इतना हाई उसमें नहीं जाता है।
0: ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट राइट राइट।
1: लेकिन जैसे कि हमारे रूरल एरिया में तो जैसे पालक है, मेथी है, ये लोग बहुत इजीली मिल जाता है, तो ये चीजें हम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं कि वो लोग मेथी को साग खा सकते हैं, या फिर आटे में मेथी को लगा कर या पालक को लगा के वो एक तरीके से बॉडी में जा सकते हैं, वो भी एक फाइबर का और आपके विटामिन्स मिनरल्स का सोर्स है।
0: यानी कि जो विकल्प की बात मैं आपसे कर रहा था, वो आपने बताया कि ये चीजें आप ले सकते हैं, इंटेक करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए लाभकारी होगा। तो लिसनर्स, वाकई सच बात है कि कुदरत ने बहुत सारी चीजें हमें खाने के लिए दी हुई हैं, उनका अच्छी तरीके से सही समय पर हम सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है हमारे लिए, तो इन बातों को आप नजरअंदाज ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पोषण बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे ही। हमारे साथ जुड़ी हुई है डाइटिशियन है डॉक्टर पूजा, शारदा अस्पताल से। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डायटिशियन हैं डॉक्टर पूजा शारदा अस्पताल से, आहार विशेषज्ञ हैं और आहार के संबंध में बातें हो रही हैं, पोषण के संबंध में हम बातें कर रहे हैं और ये सारी बातें डॉक्टर साहब आप तक बातें पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर पूजा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन।
0: स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण, एक सवाल ये आता है कि क्यों आवश्यक है, इसकी क्या भूमिका है, हम अच्छा पोषण की बात क्यों कर रहे हैं?
1: देखो, हमारे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन के लिए। उसी तरीके से अगर हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, मान लो हमारे खाने में प्रॉपर कार्ब्स नहीं है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जैसे कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, जैसे वो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, हमारे टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, वो होता है जैसे हमारे प्रोटीन की कमी है, बाल झड़ना, स्किन प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रोटीन से होते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, अगर उनकी भी कमी रहती है तो उनसे भी हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि विटामिन ए की कमी है, हमारे आंखों से कम दिखना,
0: जी।
1: इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन डी की कमी होना, इसी जैसे बोन्स बोलते हैं लोग, आजकल जनरली सुना होगा लेडीज में कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, तो है कि ज्यादातर फीमेल्स में मिलेगा कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो इस चीज से लोग अवेयर नहीं है। दैट्स व्हाई अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे।
0: क्या बात है। अब मुझे लगता है लिसनर्स, आपकी एक समस्या का समाधान यहाँ हो गया। डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत अच्छी बात बताई कि हर चीज की अपनी अपनी भूमिका है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, विटामिन क्यों जरूरी है, कैल्शियम क्यों जरूरी है। कैल्शियम दूध में आपको मिलता है और आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, इसलिए जब हम बच्चों को अमूमन दूध पिला रहे होते हैं, कहा जाता है कि बच्चे दूध पियो, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा कि अक्सर हमने सुना है कि जब खड़े होकर हम पानी पीते हैं तो उसका जो फर्क है हमारे घुटनों पर पड़ता है। एक साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं कि आप वो कोई भी पेय पदार्थ है, वो चाहे दूध है या दूध के अलावा पानी आप पी रहे हैं, तो वो बैठकर पीना चाहिए। अमूमन आपने देखा भी होगा कि आयुर्वेद में जो लोग हैं वो इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से मानते हैं और समझते भी हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करते हैं। तो लिसनर्स, इन बातों को भी आप ध्यान रखें, नजरअंदाज ना करें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद डॉक्टर पूजा से बहुत सारी बातें अभी भी होना बाकी है। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप हैं डॉक्टर पूजा शारदा अस्पताल से, जो कि आप डाइटिशियन हैं और आहार के बारे में, अच्छे आहार के बारे में, पोषण के बारे में ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से जान रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: डॉक्टर पूजा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे पोषण के बारे में बात कर रहे थे और उसके फायदे के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुपोषण वर्ड हमने सुना है, कुपोषण का वो शिकार हो गई है, बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो गया है, तो वो क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे कुपोषण के बारे में?
1: कुपोषण गगन, जैसे कि हमने देखा है कि न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, जैसे कि एनर्जी, माल न्यूट्रिशन किसमें होता है, जिसमें एनर्जी की कमी है, जिसमें प्रोटीन की कमी है। मोस्टली ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलता है कि बच्चा प्रॉपर खा नहीं पा रहा है, पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते। कि जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट मेरे कल ही ओपीडी में आया था, और पेशेंट जो है वो बच्ची मतलब बिल्कुल इतनी वीक थी कि मतलब प्रॉपर, उसके पेरेंट्स, उसकी मदर को मैंने पूछा कि ये कुछ दूध नहीं पीती थी आपने कभी, इसको दिखाया नहीं ला के? शी सेड कि नहीं, मैं इसको दूध पिलाती थी, ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, उसके बाद जब मैंने इसको फॉर्मुला मिल्क देना स्टार्ट किया तो उसने नहीं लिया।
0: यानी कि उस तो इस तरीके से 6 महीने, हाँ, साल भर क्या?
1: नहीं, हाँ, उस बच्ची की जो उम्र थी वो थी 15 महीने, लेकिन उसका वेट सिर्फ 5 किलो।
0: ओह माय गॉड।
1: हाँ, तो वो इस कदर मतलब जिसे बोल सकते हैं माल नरिश थी। तो उसको हम मतलब के उसकी मदर को मैंने बोला कि ये मिल्क नहीं लेती थी तो आपने उसके लिए कुछ किया
0: जी?
1: तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने कोशिश की लेकिन ये पीती नहीं थी, वोमिटिंग कर देती थी। तो अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हमें इसको इस टाइम लेके जाना चाहिए, हमें डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछना चाहिए कि ये दूध क्यों नहीं लेती है। तो इसीलिए कल उसके लिए प्लान किया गया कि डाइट कैसे लेना है, जैसे उसको बताया कि दूध कैसे देना है, दूध को किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि हम बच्चा दूध नहीं पीता है, जनरली देखा है बच्चा दूध पीने में बहुत नाटक करता है कि दूध में नहीं पीऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। कोशिश यही होती है कि सादा दूध बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो जिसमें बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी के हम फ्लेवर्स डाल के दे सकते हैं। बच्चे को हम स्मूदी फॉर्म में दे सकते हैं मिल्क, बच्चे को हम शेक फॉर्म में दे सकते हैं। स्मूदीज में हम वो फ्रूट्स जनरली ऐड करें बच्चे के लिए जो वो पसंद करता है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स हैं, हर चीज है खाने में, जैसे मोस्टली मिलते हैं जैसे राउंड्स में बच्चे या ओपीडीज में आते हैं, मम्मी बोलती है कि उनकी ये कुछ खाता नहीं है मैम, ये कुछ भी नहीं खाता है, मैं इसको खाना देती हूँ खाता ही नहीं है। तो मैंने बच्चे से सिर्फ एक चीज पूछी कि बेटा आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है। उसने बोला कि मुझे पालक पसंद है। तो मैंने बोला देखो पालक पसंद है, आप उसको पालक में वैरायटीज क्यों नहीं देते, आप पालक की पूरियां इसे दो, पालक की सब्जी इसे दो, है ना। तो पालक में आपको बहुत सारी वैरायटी बच्चे को दे सकते हैं तो वो खाएगा। मेन चीज क्या होती है, बच्चा ना खाने के लिए अट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे बेसिकली बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट इन द सेंस की उसका जो, जैसे दूध के लिए अभी मैं बोल रही थी कि उसका कप ऐसा होना चाहिए कि वो दूध ही ना देके कप देख के बोले कि मैं इसे फिनिश कर दूंगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हम खेल खेल में बच्चे को दूध पिला दें कि पहले हम दूध ले लिया, पहले बच्चे को दिया, वो डिनाई करे कि मैं नहीं पीऊंगा, तो फिर हम उसको लेके कि नहीं मैं पी लेती हूँ तेरा दूध, या मैं अभी कैट को बुलाती हूँ, कैट तेरा दूध फिनिश कर देगी, तो बच्चे सेट की नहीं नहीं मैं पीता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इसी तरीके से खाने में है, बच्चे को आप वैरायटीज दो, उसको अगर वो पनीर ऐसे नहीं खा रहा तो पनीर सॉल्टे करके उसको दे सकते हैं,
0: या दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं।
1: हाँ, बच्चे को मतलब खाने के लिए बच्चा बड़े देखो इतना तो बड़े लोगों में भी होता है, वो भी वैरायटीज चाहते हैं कि जैसे अब मान लो कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ, पराठा डॉक्टर मना करे, डाइटिशियन ने मना किया पराठा, लेकिन एक दिन होता है क्रेविंग हो रही है पराठा खाने की, तो वही चीज बच्चे में होता है, बच्चे को भी वैरायटीज चाहिए।
0: ओके ग्रेट। बाकी आपने इस सवाल का बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है, और इस बात में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा रूठ रहा है तो आज का जो समय है वो मोबाइल का समय है, क्योंकि उसको बच्चे को कार्टून पसंद है, गाने पसंद है, पोइम पसंद है, तो वो अगर वो देखकर कुछ पी ले तो वो तो आपकी हेल्थ के लिए सही है, उसके बच्चे की हेल्थ के लिए सही है। लेकिन थोड़ा आप अंडरलाइन भी हम करना चाहेंगे कि ज्यादा मोबाइल देखना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि आंखों पर फर्क पड़ता है।
1: इनफैक्ट गगन मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ, मेरा बेबी
0: कर रहे हैं,
1: मेरा बच्चा है वो 7 मंथ का मेरा बेबी है, और उसका भी सेम सीन है कि वो भी जैसे अगर दूध पीता नहीं है तो मेरे को, मुझे भी कभी कभी मोबाइल यूज करना पड़ जाता है। बट यही है कि हाँ पेरेंट्स को, हाँ घर की कहानी है, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के लिए अभी ये सब गैजेट्स ना दें, क्योंकि उसके आंखों पे असर पड़ता है उस चीज का. तो ये गैजेट्स अवॉइड करना चाहिए. इससे अच्छा है कि हम बच्चे के लिए खुद अपने आप से खेल बनाएं, कुछ ऐसे साउंड्स हम निकालें या बच्चे के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज करें कि वो खा ले. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा बेटा भी उसी तरीके से खाए, फोन ना देखे.
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब. सो लिसनर्स, ये साधारण तरीके से बातें हम इसलिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, और बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि बेसिक बातें भी हम नहीं समझ पाते, उनको अच्छी तरीके से

0: हम अपने आप को अपने बच्चों को कैसे बचा कर रखें?
1: देखिए गगन, ये तो सच में बहुत कॉमन है कि मिलावट का दौर है, इतना ज़्यादा ये चीज़ रहता है कि मिलावट, जैसे दूध में पानी का मिलना, दूध में स्टार्च का मिलना, नकली पनीर पकड़ा जाना, उस तरीके से मिठाइयों में मिलावट होना, आपकी देसी घी में डालडा या वनस्पति घी की मिलावट होना, आपके लाल मिर्च में ईंटों या मसालों को मिलाना बेकार क्वालिटी के, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो जैसे कि अगर बोल सकते हैं कि दूध में, जैसे हमें दूध में अगर पानी चेक करना है तो लैक्टोमीटर की हम सहायता से उसकी रीडिंग जो नॉर्मल होती है वो होती है 28 to 34। अगर 28 से नीचे जाता है तो इट मीन्स उसमें पानी है, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्च को भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम दूध में कॉन्सेंट्रेट SCL डालते हैं तो वो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, तो जैसे कि उसमें बोल सकते हैं कि हाँ इसमें स्टार्च मिलाया हुआ है। इसी तरीके से जैसे चाय की पत्ती है, उसे हम व्हाइट पेपर पे अगर रब करते हैं तो वो कलर छोड़ना शुरू कर देती है, तो उसको मतलब उसमें भी कुछ मिलाया गया है। इसी तरीके से फूड एडल्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ।
0: तो इससे हम कैसे बचें, किन चीजों का हम लोग ख्याल रखें, कैसे अवेयर हो सकती है?
1: कोशिश करें कि हम जैसे कि घी है वो हम अपने घर में निकालें, जैसे मलाई है मलाई से लेकर हम घी निकालें। इसी तरीके से स्वीट्स है, हम कोशिश करें कि हम बाहर से ना लेके हम घर में अपने आप बनाएं। आप मावे की मिठाई अपने घर में खुद से बना सकते हैं, आप तिल के लड्डू गुड़ के साथ बना सकते हैं, आयरन रिच होते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी होते हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं तक बातें पहुंचाई, इस बात के लिए दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया और ये सारी बातें हमारे लिसनर्स यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी जिंदगी में अमल में लेकर आएंगे, क्योंकि हेल्थ का वास्ता है, आपके अपनों का वास्ता है, आपके अपने बच्चों का वास्ता है, और यही बातों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया। सो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय जो कि ग्रेटर नोएडा में उपस्थित है, नॉलेज पार्क में उपस्थित है, आप यहां आ सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी रही डॉक्टर पूजा, डाइटिशियन शारदा अस्पताल से। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू गगन, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
0: थैंक यू मैम। सो लिसनर्स, अधिक जानकारी के लिए बस सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या

0: फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है, तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं,
2: अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: Bingo और मलेरिया का दी एंड। चिकनगुनिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसान भाइयों और गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए। किसान मित्रों, पशुपालन के अंदर गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्व माना गया है। हमारे भारत में गाय की जो प्रजाति पाई जाती है उसे बांस इंडिकस के नाम से जाना जाता, जिसे हम साधारण भाषा में देसी गाय कहते हैं। ऐसे में स्वदेशी गायों के संरक्षण और विकास के लिए कई प्रकार की प्रयोगशाला बनाई गई हैं और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसान भाइयों को देसी गायों के पालन और इनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मदद की जा रही है। तो किसान भाइयों, आगे भी हम आपको इस योजना के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन इस समय आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल

हुसैन भाई कहिए फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो बॉर्डर पर

तो किसान मित्रों, अभी आप ये रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे ऋषि पाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा था जय जवान जय किसान का। और आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गोकुल मिशन योजना की। किसान मित्रों, इस योजना के जरिए भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपरकर, रेड सिंधवी, इन गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई कैसे ले सकते हैं। तो सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जो छोटे पशुपालक और किसान हैं, उन सभी को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा और केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, यदि हमारा कोई भी किसान भाई सरकारी कर्मचारी है या वो सरकारी पेंशन लेता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। जी हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में संपर्क करना पड़ेगा। तो वहां पर जाकर आप संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की। और आइए फिर से करवाते हैं आपका मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

तो किसान मित्रों, अभी आप द्रौपदी चीर हरण के खिस्से से ये रागनी सुन रहे थे और कलाकार थे रविंद्र खालौर और उनके साथी। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है, लेकिन खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। किसान मित्रों, जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता, ना देखने में आया है अभी तक, और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। तो किसान मित्रों, और भी क्या-क्या फायदे होते हैं जैव उर्वरकों के, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और रागनी आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा नरसी के भात का। तो आइए सुनते हैं प्रियंका चौधरी से ये रागनी।

मनसा सेठ को बुलाया, बोले महाराज आपने बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी, अगर उसकी कोई कॉपी आपके पास हो तो मिला लो, कोई सामान कम या ज्यादा तो नहीं है, या कोई ऐसा हो हम भूल गए हो, बहुत ज्यादा था।

0: हरनंदी की सास ने बोली मारी थी,
1: हाँ।
0: तेरे बाप के पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, उससे कह दियो भात भरने आए तो दो पत्थर ले आए, हम मान लेंगे भात भर गया। वो दो पत्थर सुनिएगा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी, और किस्सा था नरसी के भात का। आपको जरूर ये रागनी पसंद आई होगी। और आज के खेत खलियान कार्यक्रम में आपको पता है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जैव उर्वरकों की। किसान मित्रों, फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को अमोनिया के रूप में सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, और जमीन में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से हम अपनी खेती में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में और इनसे होने वाले फायदे के बारे में। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। तो आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर यह तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: कैसे तेरी सेहत कड़ा पड़ी से बता।
1: तेरी कसम सेहत का ठिकाना नहीं, तेरे इंतजार का था।
0: अच्छा रे
1: कैसे
0: आज रात से हो रहा
1: है मन, कैसे पल पल भारी हो रही है
0: तेरे मन, कैसे चाहिए
1: प्यार का तलबगार हूँ।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा

0: यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: गई थी देखने,
1: बहुत सुंदर है।
2: नहीं जी, हम तो गए ही नहीं थे, कैसी है?
0: हम तो देखे हैं, हमारी बगल वाली चाची है ना, उन्हीं के साथ हुआ गए थे।
2: अच्छा, हमको भी चलो ना, हमको देखना।
0: अपनी छोटकी बहनिया को ले लीजिए, जाइए देख लीजिएगा।
2: छोटकी बहनिया नहीं जाएगी ना जी, तुम नहीं जानती हो।
0: काहे नहीं
2: चलो ना?
3: बक जी, काहे लड़ रहे हो तुम लोग?
2: ये हमको लेके नहीं जा रही है, ये देख चुकी है दुल्हन आई है उनके घर ना।
3: अरे हमको भी देखना है, चलो गी।
2: चलो चला जाए,
0: इसी के साथ चले जा, हम दो बार जाएंगे तो क्या कहेंगे?
2: तो क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेना ना, चलो हमारे साथ।
3: बक जी, दुल्हनिया का सोचेगी?
2: कुछ नहीं सोचेगी, वो हम लोगों को थोड़ी देखेगी, हम लोग उसको देखेंगे तो शर्माएगी।
0: इसी के साथ चले जाइए ना।
2: मतलब नहीं जाओगी?
0: चलिए चलिए, लेके चलते हैं।
2: हाँ चलो चलो जी, तुम भी चलो।
4: अरे रूही।
0: हाँ।
4: अरे ये सारा सामान तो हटा दो, अपनी भाभी को आराम तो करने दो।
0: हाँ हाँ ठीक है, करते हैं।
4: सुबह से बेचारी थक गई है, लोग आके देख के जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहती हैं आप।
4: हाँ हाँ सामान हटाओ तो। ए बहुरिया, तनी आराम कर लो।
2: जी माँ जी।
4: रूही।
0: हाँ।
4: भाभी को पानी दो तो।
0: अभी लावत है।
4: कुछ खाओगी?
2: नहीं माँ जी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी।
4: अरे ए रूही, कहाँ रह गई?
0: हाँ माँ, आई।
4: अरे आओ नहीं, अपने भैया को तो बोल दो कि आके आराम कर ले।
0: हाँ भेज देती हूँ। भैया भैया भैया।
5: हाँ।
0: अरे वो अम्मा बुला रही है अंदर। वहाँ
5: अम्मा को कहो 2 मिनट इंतजार करे, हम दोस्तों को भेज के आ रहे हैं अभी।
0: हाँ ठीक है, बोलत है, आइए जल्दी से।
5: अच्छा अब चलो तुम लोग, आई गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मा बुला रही है हमको, तुम लोग से भेंट करते हम कल सुबह। अम्मा,
4: तुमको अपने दोस्तों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रहा है का?
5: ओ नहीं अम्मा, वो कुछ बतिया रहे थे लोग, गए सब, बताई।
4: अच्छा एक बात बताओ, ये सोची भी हो कि बहुरिया को कह दोगे तुम?
5: हाँ हाँ काहे नहीं, यहाँ रखे हैं, अब भेंट होगा तो दे देंगे हम।
4: भेंट का होगा, कल भेंट करोगे का? अरे जाओ, बहुरिया आराम कर रही है, उससे कुछ बात कर लो, बेचारी को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बात करे, वो हम लोगों से शर्मा रही होगी, तुमको तो बताएगी ना।
5: अम्मा वो बच्ची थोड़ी ना है, तो उसको कोई जरूरत बुझाएगा तो बताएगी आपसे।
4: चलो ठीक है, लेकिन तुम जाओ ना एक बार।
5: ठीक है जा रहे हैं, वो बाहर टेंट वाला आया है, तनी हिसाब करके फिर जा रहे हैं हम।
4: अच्छा ठीक है, चले जाना।
6: वैसे रूम में काफी अड़सा है, ठीक हो जाएगा, अभी सामान उमान है, रखा उखा है यहाँ पे। खैर वैसे तुम्हारा नाम क्या है नंदनी?
7: घर तेरा हो गया।
8: काहे कड़वा पे नहीं देखे थे क्या?
6: ना ही देखे रहे पर कोनो बात करने का, खैर मजा किया हो, बढ़िया है, खूब बनेगी हमारी।
7: आज से मेरा घर तेरा हो गया।
6: वैसे जब हम पहली बार तुम्हारा फोटो देखे थे तुम हमको बड़ा नीक लगी थी, एकदम ऐश्वर्या राय। तुम देखी थी हमारा फोटो शादी से पहले?
8: हाँ हमने देखे थे, अम्मा के अलमारी से निकाल के, एकदम शाहिद कपूर लगे थे।
6: बहुत मजाक करती हो तुम भी। अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए हम का लेके आए हैं, तुम सुबहिये से भूखी होगी ना, बगल में हलवाई खाना बना रहे हैं, उसे चुरा के तुम्हारे लिए कचौड़ी आई गुलाब जामुन लेके आए हैं।
8: लेकिन हम तो खा चुके हैं, अम्मा हमको खिला चुकी हैं।
6: खा चुकी हो
8: जी?
6: चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो एक और चीज लाए थे तुम्हारे लिए, आँख बंद करो दिखाएं।
8: अच्छा लेकिन आँख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे?
6: अरे हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटी विथ ब्रेन, सही है सही है। अच्छा ठीक है फिर आँख बंद करो, और जब हम कहेंगे खोलने के लिए तब खोलना अपना आँख।
8: अच्छा ठीक है।
6: एक दो, देखो चीटिंग ना करो तुम अब, नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे फिर। आँख बंद करो, एक

0: अब अपनी आँख खोलो, ये देखो हम तुम्हारे लिए गजरा लेके आए हैं।
1: अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास तो है।
0: अच्छा, तुम्हारे पास है? हम बहुत सोचे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने से पहले कि काले को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल पर इंटरनेट पर देखे हम कि गजरा औरतों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम ले लिए तुम्हारे लिए। खैर कोई ना, कल लगा लेना।
1: अरे नहीं नहीं, हमने जो लगाया है ना, वो तो ऐसे ही मुरझा गया है, अब आपका लगा लेंगे।
0: हाँ बढ़िया है।
2: दिल है वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया वो मेरे
0: ख्वाब। ये लो लगा लो।
1: सुनिए ना, आप ही लगा दीजिए ना।
0: अब हमको तो नहीं आता है लगाना। अब
1: अरे कोई बात नहीं, हम बता देते हैं।
0: ये भी ठीक है।

0: अरे बहुरिया, तैयार हो गई कि नहीं?
1: जी माँ जी, हो गई।
0: आओ ना बेटा, बाहर आ जाओ, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे। और बबुआ को भी बोल देना कि वो भी आ जाए।
1: माँ जी, वो तो सुबह सुबह ही चले गए हैं।
0: कहाँ चला गया?
1: कुछ बता के नहीं गए हैं।
0: बिना बताए चला गया? इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, तुम आ जाओ, लेकिन एक बार फोन करके पता कर लेना कि कहाँ है वो।
1: जी।
2: The person you are trying to call is currently busy.
1: माँ जी, उनका फोन तो बिजी बता रहा है।
0: एक बार ही औरी करके देख लो।
1: जी माँ जी, देखते हैं।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: अभी कब तक आएंगे? सुबह से शाम हो गई।
4: शाम हो गई?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: हम सुबह से कुछ खाए नहीं है। हम सोच रहे थे कि आप आते तो आपके साथ ही खाते।
4: आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं।
3: हाँ जल्दी आइए।
4: रखो तुम।
3: जी।
0: बात हुई बबुआ से बहुरिया?
1: हाँ माँ जी।
0: क्या बोला है?
1: अभी कुछ देर में आते हैं।
0: वैसे वो है कहाँ आज?
1: वो अपने दोस्तों के साथ है, थोड़ा सा कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो पार्टी कर रहा है?
1: जी, कह रहे थे कि शादी का पार्टी मांग रहे थे लोग।
0: अच्छा चलो ठीक है, चलो तुम भी खाना खा लो, तुम कुछ खा ही नहीं हो सुबह से।
1: माँ जी आप लोग खा लीजिए, वो आएंगे तो हम उनके साथ खा लेंगे।
0: अरे वो पता नहीं कब तक आएगा, चलो ना खा लो।
1: नहीं नहीं माँ जी, आप लोग खा लीजिए, हम उनके साथ ही खाएंगे।
0: अच्छा चलो ठीक है, एक बार और फोन करके पूछ लेना कि कब तक आ रहा है। ठीक है?
1: ठीक है माँ।

0: नंदनी
1: जी आई। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे
0: सब कोई सो गए ना?
1: हाँ सब लोग सो गए, लेकिन आपको क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, वो कपार हमारा भारी हो रखा है।
1: आपने पी रखी है?
0: नहीं पागल हो, हम कहाँ पीते हैं, हमने नहीं पी रखी है।
1: लेकिन हमको तो महक रहा है।
0: पागल होगा लोग का, तुम्हारा नाक खराब होगा फिर।
1: नहीं आपने पी रखी है।
0: चुप रहो, नहीं पिए मैंने।
1: माँ जी को बुला, खाइए मेरी कसम।
0: दोस्तों के साथ इतना होता रहता है। अच्छा हटो तुम सामने से, मेरे लिए चाय बना दो। इसका
1: हम नहीं बनाएंगे, आप क्यों पी के आए हैं?
0: अरे चुपचाप से चाय बना के लाओ मेरे लिए।
1: चाय नहीं, आप नींबू पानी पीजिए, नशा उतर जाएगा आपका।
0: चुप, जब हमने तुमको बोल रखा है चाय बनाने के लिए तो क्या नींबू पानी लगा रखी हो तुम? जितना बोला जाए उतना ही करो, आगे आगे करने की जरूरत नहीं है तुमको। बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो करोगी तुम। चलो जाओ यहाँ से, हम ठीक है ऐसे ही। कौन है?
2: तुम्हारी अम्मा है बबुआ, तनी दरवाजा तो खोलो।
1: आप रुकिए हम खोलते हैं।
2: अरे ये क्या हुआ बहुरिया, तुम रो काहे रही हो?
1: नहीं अम्मा, वो घर की याद आ रही थी थोड़ी सी।
2: अरे बेटा हम लोग है ना, काहे रो रही हो, काहे चिंता कर रही हो? और ये क्या हुआ, तुम्हारा गाल इतना लाल काहे दिख रहा है, ये उंगलियों के निशान क्या हुआ?
1: नहीं अम्मा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
2: अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो। अच्छा सुनो ना बहू, हम सोच रहे थे कि थोड़ा मेरा बैग वो पैक कर देती तो हम जाके इसके मामा के यहाँ घूम आते।
1: कब जाएंगी माँ?
2: अच्छा कल सुबह हम पारितोष को बोलते हैं कि कल सुबह हमको छोड़ दे।
1: ठीक है अम्मा, तो हम आपका बैग अभी पैक कर देते हैं।
2: ठीक है बहू, ठीक है।
0: अरे ये क्या कर रही हो तुम?
1: वो अम्मा जाने वाली है ना अपने मायके, तो उनका बैग पैक कर रहे थे।
0: अच्छा सुनो तनिकी, हाँ
1: अम्मा जाने वाली है ना अपने मायके, तो उनका बैग पैक कर रहे थे।
0: अच्छा सुनो तनिकी, हाँ आओ।
1: जी कहिए।
0: बैठो, नाराज हो हमसे?
1: नहीं नाराज क्यों होंगे।
0: नहीं वो हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिए ना, हमको नहीं करना चाहिए थे। अब वैसे भी हम होश में नहीं थे, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तुम्हारे आगे देखो हाथ जोड़ते हैं, आगे से कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो।
1: अरे अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, वो हम समझते हैं आप थोड़ा सा नशे में थे तो हो गई होगी गलती।
0: कितनी समझदार हो तुम। अच्छा सुनो कल सुबह हमको जगा देना, हमको काम पे जाना है।
1: जी ठीक है। अरे सुनिए, माँ जी तो बोल रही थी कल आप उनको सुबह छोड़ने जाएंगे।
0: अम्मा को छोड़ना है? कहाँ?
1: हाँ उनके मायके।
0: अम्मा ने बताया नहीं? अरे ठीक है, हम अम्मा को छोड़ने के बाद से चले जाएंगे दफ्तर। तो ऐसा करो तुम हमको तनी पहले ही जगा देना।
1: ठीक है हम जगा देंगे।
0: चलो ठीक है।

0: नंदनी
1: जी आ गए।
0: अब तो अम्मा भी नहीं है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं।
1: क्या लाए हैं?
0: वो बनवारी लाल के वहाँ का स्वादिष्ट जलेबी और रबड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए।
1: आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अभी बहुत सारा काम है ना, अम्मा जी भी घर पे नहीं है।
0: वही तो, अम्मा जी भी घर पे नहीं है, कहाँ हम लोग को ऐसा टाइम मिलता है। आओ बैठो, तनी बतियाओ हमसे और साथ में खाया जाए। स्वादिष्ट है ना?
1: हाँ बहुत।
0: अच्छा ये बताओ, तुमको शादी वाले दिन काका मिला था?
1: वो हमको बहुत सारा उपहार मिला था और पैसा भी मिला था बहुत सारा, सब रखे हैं संभाल के।
0: आओ ना तनी देखते हैं काका मिला है।
1: अब बाद में देखिएगा ना।
0: आओ ना, 2 मिनट तो लगेगा। अब वैसे भी कौन सा इतना काम पड़ा हुआ है, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे।
1: अच्छा ठीक है चलिए। अब वो जो अलमारी के ऊपर संदूक रखा है ना, उसको नीचे उतारिए।
0: अरे अरे ये काम भी तुम हमसे ही करवाओगी। अच्छा चलो बैठो। बहुत भारी है, लग रहा है भर भर के उपहार मिला है तुमको अम्मा के वहाँ से।
1: हाँ क्योंकि सबसे छोटे हैं ना वहाँ पे, इसलिए।
0: अच्छा ये सबका चाबी वो भी कहाँ रखती हो तुम?
1: सब अलमारी में रखते हैं, बैग में अपने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, हमको देर हो रहा है, दफ्तर जाना है हमको।
1: ठीक है आप जाइए।
0: हेलो। हाँ सुरेश, अरे कैसन हो? एकदम में बढ़िया, एकदम में बढ़िया। हाँ कहाँ तुम्हारे हो? अरे रे हमारे पास तो पैसा है नहीं अभी। अब तुमको तो पता ही है कि महीने का बीच चल रहा है और बीच में हमको सैलरी मिलता नहीं है, महीने के शुरुआत में मिलता है। अब देखो पार्टी तो हम करा दे पर हमारे पास पैसा उसे नहीं है। अच्छा ना ना, अरे अरे अरे ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है तुम आओ, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। का करे किससे उधार ले हम? किराने वाले भैया? नहीं नहीं नहीं, उनका तो पहले से बहुत उधार है। ओम प्रकाश चाचा से लेकर शादी में बहुत खर्चा किए हैं। अम्मा भी नहीं है, नंदनी से मांग लेकर नहीं क्या सोचेगी हमारे बारे में। ऐसा करते हैं कि उसके पर्स से निकाल ले कुछ पैसा, नहीं कहीं देख ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दोस्त है, दोस्त को पार्टी ना कराए तो फिर बुरा मान जाएगा। ऐसा करते हैं निकाल लेते हैं, फिर जब मिलेगा तो चुप्पे से रख देंगे। और रखेंगे भी का है, बीवी है हमारे, सुख दुख में काम नहीं आएगी तो फिर किसके सुख दुख में काम आएगी। संदूक की चाबी कहाँ बताया था नंदनी ने? अरे हाँ अलमारी में कहीं देख ना ले, कहाँ नहीं आ रही है।
1: अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप?
0: नहीं कुछ
1: ढूंढ रहे तो मैं हेल्प कर देती हूँ।
0: अरे कुछ नहीं, वो बस हम फोन भूल गए थे, हम अपना वही देख रहे थे कहीं इसमें, उस दिन तुम दिखा रही थी तो छूट तो नहीं गया। अच्छा ठीक है तो हम आते हैं बाद में।

0: पता नहीं क्या हो गया इनको।
1: बच गया।
2: और कोई ना, पैसे तो मिल गए। पार्टी होगा आज रात को। हाँ सुरेश, पैसे का व्यवस्था हो गया है, तुम बस आ जाओ। अच्छा नंदिनी, हम आते हैं थोड़ी देर में।
0: ठीक है, जल्दी आइएगा।

0: नंदनी नंदनी नंदनी
1: हाँ आ गए आ गए आ गए। क्या हो गया?
0: दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है तुमको? कहाँ थी तुम?
1: वो कुछ
0: चुप। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से बहाने बनाती हो। आगे से कभी दरवाजा खोलने में देर लगा तो हाथ पैर हम तुम्हारे तोड़ देंगे।
1: ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
0: कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? समझ में नहीं आती? दिमाग में नहीं घुस रही मेरी बातें?
1: ये आपको हो क्या गया है?
0: खड़े यहाँ से। तुम्हारा ढेर मन कर रहा है रोने का, रुलवा दो तुमको और चुपचाप से जाओ, खाना लेके आओ हमारा। चुप।
1: खाना लग गया आपका, आके खा लीजिए।
0: क्या बनाया है तुमने खाने में?
1: भिंडी की सब्जी है और चावल बनाया है मैंने।
0: क्या ये बनाया खाने में? तुमको हम बोल के गए थे ना कि आज खाने में कुछ बढ़िया बनाना, ये बढ़िया है, ये भिंडी और ये चावल और दाल। ऐसे अक्कल उक्कल बेच आई हो का तुम कहीं? माँ ने खाना ना बनाने को नहीं सिखाया का तुमको? सारा मूड खराब कर दिया। भूखे यहाँ से।
1: हम क्या करें, घर में पैसे ही नहीं थे और किसी ने संदूक से हमारे सारे पैसे निकाल लिए।
0: अब, अब, अब, अब पैसे निकाल लिए? कैसे निकाल लिए? तुमने कहीं इधर उधर रखे होंगे?
1: नहीं, हम उसी में रखे थे, हम संदूक में ही अपना पैसा रखे थे। और आप जब गए थे तो मैं वापस रूम में आई, मेरे पैसे नहीं थे, सारे गायब हो चुके थे।
0: तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पैसे हम लिए हैं? तूने तूने तूने चोर बोला हमको? तुम चोर बोल रही हो हमको? तुम्हारे सारे पैसे हमने लिए हैं, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा?
1: नहीं वो
0: तुमको हम अभी बताते हैं। एक तो तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया और उसके बाद से तुम हमको चोर बोल रही हो। तुमको हम सिखाते हैं कि खाना कैसे बनता है। चलो मेरे साथ।
1: नहीं कहा ले जा
0: रहा? चलो चुपचाप।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी।
0: चलो यहाँ से।
1: मेरे बाल।
0: चुप।
1: नहीं दर्द हो रहा है मेरे बाल।
0: चुप।
1: बाल।
0: चलो यहाँ से।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मेरे बाल।
0: तुमको हम बताते हैं।
1: नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप?
0: तुमने जिस जबान से हमको चोर बोला आज हम उस जबान को ही जला देंगे, और जिन हाथों से तुमने खाना बनाया है आज इस पे दाग पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ताकि अगले बार से तुम खाना बनाते वक्त ध्यान रखो।
1: छोड़िए मुझे प्लीज, छोड़िए। मेरे हाथ, मेरे हाथ, छोड़िए प्लीज।
0: चुप।
1: माँ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। मेरे हाथ।
0: मुंह से अगर आवाज निकला तो जान से जाओगी तुम आज।
1: माँ माँ
0: चुप।
1: माँ कोई बचाओ।

नंदिनी के साथ जो हो रहा था वह हिंसा था, लेकिन इस बात की जानकारी उसे नहीं थी। वो हिंसा सह रही थी। उसके साथ शारीरिक हिंसा तो हो ही रही थी, साथ साथ वो आर्थिक हिंसा की भी शिकार थी। पारुतोष के प्रतिदिन के इस व्यवहार से वो परेशान हुई और अंत में उसने खुद तय किया कि वो पुलिस के पास जाएगी और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी। वह पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पुलिस ने बताया कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है। उन्होंने बताया कि किसी को भी थप्पड़ मारना, दांत से काटना, मुक्का या लात से मारना या फिर किसी वस्तु का इस्तेमाल करके शरीर को चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा होती है। और पैसे से जुड़े अधिकार ना देना, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा से जुड़े अधिकार से वंचित रखना, घर के काम जरूरत से ज्यादा करवाना या फिर दहेज की मांग करना, खर्चे का हिसाब चिल्ला कर या मारपीट कर करना आर्थिक हिंसा होती है। इस वजह से आप शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह की हिंसा के शिकार होंगे।

उन्होंने बताया कि हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप शिकायत करके अपने साथ हो रहे हिंसा को रोक सकती हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आप अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसके बाद आपको घरेलू हिंसा महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने नंदिनी को इस बात की जानकारी दी कि किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए निजी या सार्वजनिक स्थानों पर वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ हिंसा की शिकायत कर अपने साथ हो रहे हिंसा से बचा जा सकता है। नंदिनी को बस इतना जानने की देरी थी। नंदिनी ने तुरंत अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया और उसे तुरंत प्रोटेक्शन भी मिला। अगर आप भी किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हैं या आपके साथ हिंसा हो रही है तो इस बात की जानकारी अपने किसी भी करीबी को जरूर दें। इसके अलावा आप महिला हेल्पलाइन 1090 या 112 पर कॉल कर सकती हैं या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती हैं। और अगर आपके साथ हुई हिंसा का आपके पास कोई भी सबूत है तो उसे भी साझा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-116-66

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: बहुत

0: दिन गुंडा मलेरिया दिमागी बुखार से बची तो बेजान। बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का खूब प्यार भरा नमस्कार और इसके साथ खूब सारा प्यार, लाड़ और दुलार। आप सब मेरा प्यार, लाड़ और दुलार इकट्ठा तो कर रहे हैं ना? तो अब तक तो खूब जमा हो चुका होगा, थोड़ा मुझे भी दे दीजिएगा। थोड़ा ही क्यों, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आपका प्यार, आपका लाड़, आपका दुलार और आपकी गलबैयां मुझ तक पहुंच जाती हैं। मन की बात है, मन की बात मन से निकलकर दूसरे के मन तक पहुंच जाती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कविता लेकर आई हूँ उसमें भी कुछ ऐसी ही बात है। उसका शीर्षक पता है क्या है? उसका शीर्षक है मन करता है। आप सब बच्चों का मन अलग अलग तरह के काम करने को करता होगा। मेरा भी मन अलग अलग तरह के काम करने को करता है। तो कोई जरूरी नहीं जिस काम को करने का मन मेरा करता है वही आप भी करना चाहें और जो आप करना चाहें वह मैं करना चाहूं। लेकिन बच्चों, आपकी हमारी जोड़ी ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो काम ऐसे जरूर होंगे जो आप भी करना चाहते हैं और जो मैं भी करना चाहती हूँ। हम दो चार काम भले ही ना गिना सकें, लेकिन एक काम है जिसे करने के लिए आपका भी मन करता है और मेरा मन भी करता है। वह काम क्या है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह काम है इस चैनल के जरिए गपियाना और ढेर सारी बातें करना। तो क्या हम कविता शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए हम एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कैसी लगी आपको कविता? मुझे तो बहुत मजा आया। मजा इसलिए भी आया क्योंकि यह एक बच्चे की ख्वाहिश है, एक बच्चे की कल्पना है, एक बच्चे का मन है। उसका मन बहुत कुछ बनकर बहुत कुछ करने को करता है। अब आप सोचिए कि आपका मन क्या करता है। मैं अपने से शुरू करती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा। मेरा मन करता है कि मैं मछली बन जाऊं। आप पूछेंगे, उषा दीदी आप मछली बनकर क्या करेंगी? तो मेरा जवाब होगा, बच्चों मैं मछली बनकर सारा दिन कभी नदी में कभी समुद्र में इधर उधर तैरती रहूंगी। मुझे पानी बहुत पसंद है। यह पानी चाहे नदी का हो या समुद्र का हो या सागर का हो या फिर बारिश का हो, मुझे पानी में भीगना, बारिश में नहाना बहुत पसंद है। और मछली तो हमेशा पानी में रहती है, तो इसलिए मेरा मन तो बस यही करता है कि मछली बन जाऊं और इधर उधर तैरूं। पता है बच्चों, एक बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि मेरा मन करता है मैं हाथी बन जाऊं। हाथी क्यों? हाथी तो इतना मोटा होता है। तो क्या दीपक हाथी बनना चाहेंगे? पर दीपक ने ये बताया कि वे हाथी क्यों बनना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यह बताया कि मैं मछली क्यों बनना चाहती हूँ। तो पता है बच्चों, दीपक ने क्या बताया कि वे हाथी क्यों बनना चाहते हैं? दरअसल दीपक को गन्ने खाना बहुत पसंद है। वे जब तब खेतों में जाते हैं और गन्ना तोड़ते हैं और चूसते हैं। गन्ना खाने का तो आनंद ही कुछ और है। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं हाथी बन जाऊंगा तो मैं दिन भर बस गन्ना खाऊंगा। अब कोई भला दीपक से कहे कि भाई दीपक, अगर आप हाथी न भी बने तो भी आप दीपक बनकर गन्ना खा सकते हैं, किसने मना किया है? है ना भाई, सही बात है ना? तो दीपक का मन करता है कि वे हाथी बनकर गन्ना खाएंगे। मेरी एक दोस्त है, पता है, और यह दोस्त कक्षा 3 में पढ़ती है। अब आप कहेंगे, उषा दीदी आप तो इतनी बड़ी है और आपकी दोस्त क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची है। तो मैं कहूंगी हाँ, सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। कक्षा 3 में, कक्षा 2 में और किसी भी कक्षा में पढ़ते हो और किसी कक्षा में न भी पढ़ते हो तो भी सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। तो मेरी एक छुटकी सी दोस्त है सलोनी। सलोनी का मन करता है कि वे तितली बन जाएं। तितली बनकर वे फूलों पर मंडराना चाहती हैं। उन्हें रंग बहुत पसंद है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं, फूल भी रंग बिरंगे होते हैं। तो बस सलोनी ये चाहती है कि वे तितली बन जाएं और दिन भर फूलों पर मंडराती रहें। फूल किसी भी रंग का हो, किसी भी आकार का हो, कैसा भी हो, बस सलोनी को तो फूलों पर मंडराना बहुत पसंद है। मेरा एक और छोटा सा दोस्त है, उसका नाम है गर्वित। गर्वित का मन करता है कि मैं दादा बन जाऊं। तो मैंने गर्वित से पूछा, गर्वित आप दादा क्यों बनना चाहते हैं? तो पता है गर्वित ने क्या कहा? गर्वित ने कहा, उषा दीदी मैं दादा इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं छड़ी लेकर सब पे धौंस जमाऊं और फिर अपने छोटे छोटे पोते पोती बच्चों को मैं ढेर सारी आइसक्रीम दिलवाऊं। तो मैंने कहा कि गर्वित आप तो यह काम दादा के बिना दादा बने भी कर सकते हैं। तो गर्वित ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मैं दादा नहीं बनूंगा मेरे पास छड़ी नहीं होगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे और अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं बच्चों को आइसक्रीम कैसे खिलाऊंगा। तो इसलिए मेरा मन करता है कि मैं दादा बनकर छड़ी लेकर घूमने जाऊं और सब बच्चों को, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं ढेर सारी आइसक्रीम खिलाऊं। लेकिन मुझे मालूम है गर्वित की शैतानी और गर्वित की चालाकी। दरअसल बच्चों, गर्वित को भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है और गर्वित बच्चों के बहाने खुद भी आइसक्रीम खाया करेंगे। नाम किसका लगेगा? बच्चों का। और आइसक्रीम कौन खाएगा? गर्वित दादा। तो गर्वित ने सोचा, क्यों ना मैं दादा बनकर सबको आइसक्रीम खिलाया करूंगा और इस बहाने मैं भी खाया करूंगा। और छोटे मोटे बच्चे सब गर्वित को बहुत प्यार करेंगे, तो सब कहेंगे दादा दादा ये आइसक्रीम चख लो ना, दादा दादा ये आइसक्रीम चख लो ना, और दादा सबकी आइसक्रीम चखते चखते सारी तरह की आइसक्रीम खा लेंगे। तो है ना मजे गर्वित के दादा बनने के। मेरे पड़ोस में एक और छोटा सा बच्चा रहता है, उसका नाम है अकरम। पता है अकरम का मन क्या करता है? अकरम का मन करता है कि वह चांद बन जाए। तो पूछा मैंने अकरम से, अकरम तुम चांद क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे ठंडक बहुत पसंद है, मुझे ऊंचाई बहुत पसंद है, मुझे आसमान में टिमटिमाते तारे देखना बहुत पसंद है। मैं यहाँ धरती पर, जमीन पर खड़े होकर आसमान में तारों को देखने की कोशिश करता हूँ तो तारे मुझे ज्यादा नजर नहीं आते, मुझे बहुत गौर से उन्हें देखना पड़ता है। तो अच्छा है कि मैं आसमान में चांद बन जाऊं और अपने नन्हे मुन्ने तारों को टिमटिमाते हुए देखूं। मेरा भी मन करता है कि खुली छत पर खुले आसमान में रात को सोया जाए और फिर हम सोते सोते आसमान में चांद को और तारों को निहारते रहे और बस निहारते निहारते और उनकी गिनती गिनते गिनते हमें नींद आ जाए। कितना अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, हम सब खुली छत पर सो रहे होंगे और सब लोग तारों को गिन रहे होंगे। तो ये कुछ मेरे मन की बात थी, ये कुछ मेरे दोस्तों की बात थी और अब आपकी बारी है अपने मन की बात कहने की। आप सब बच्चों का मन क्या करने को करता है, झटपट एक कागज पर लिखिए या तस्वीर बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। बस एक पता आप याद कर लीजिए, वही काफी है। मैं आपको इसी पते पर मिलूंगी, लेकिन कंप्यूटर के डिब्बे के अंदर नहीं, मैं आपके मेल पढ़ा करूंगी जहां पर आप अपनी कहानियां, अपनी कविताएं, अपने अनुभव और अपने मन की बात लिखकर हमारे पास भेजेंगे। तो इस कविता में था कि मन करता है, एक बच्चे की कविता है कि उसका मन क्या क्या बनने को करता है और वे क्या क्या बनकर क्या क्या करना चाहते हैं। चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाएंगे, तो चरखी लेकर वे लाल पीली पतंग उड़ाएंगे। अब पतंग का मौसम तो कभी भी आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाएं, कोई जरूरी नहीं है कि संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाएं, पतंग तो हमारा जब मन करेगा हम तब उड़ा लेंगे। अब आप कहेंगे कि उड़ाएंगे तो तब उषा दीदी, जब बाजार में पतंग मिलेगी। तो हमारे पास तो इसका भी तोड़ है, अगर बाजार में पतंग नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम अपनी पतंग खुद बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि पतंग कैसे बनाई जाती है, बस आप झटपट जाकर कुछ सामान ले आइए, बाजार मत चले जाइएगा, घर में ही आपको सामान मिल जाएगा। तो पतंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक पतला सा कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची। कैंची का इस्तेमाल संभल कर कीजिएगा, ठीक है जनाब। तो आपने क्या क्या सामान इकट्ठा कर लिया, पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची, शाबाश। तो अब मैं बोलती जाऊंगी और आप उस काम को करते जाइएगा। तो सबसे पहले

हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले कागज को चकोर काटना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यह चकोर क्या होता है। चकोर का माने कि जिसकी सारी तरफ यानी कि कागज की जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, उसे हम कहते हैं चकोर। तो आपको कागज को चकोर काटना है। काट लिया? आगे बढ़े। अब क्या करना है? अब आपको झाड़ू की एक तीली को उस पर लगाना है। सीधा करके लगा दीजिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लगा दीजिए। गोंद से चिपका दीजिए, टेप से चिपका दीजिए, ताकि तीली इधर उधर न भागे। अब दूसरी तीली का क्या करेंगे? तो दूसरी तीली को भी आपको धनुष की आकृति में मोड़ना है और उस चकोर कागज के सिरे पर चिपका देना है। यानी कागज के एक सिरे पर एक कोना और कागज के दूसरे सिरे पर दूसरा कोना। तो बस आपको धनुष की आकृति बनाकर तीली को चिपकाना है। और क्या करना है? अब आप तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दीजिए। लीजिए जनाब, आपकी पतंग तैयार है। बना ली सबने पतंग? अगर कुछ बच्चे पतंग नहीं बना पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुन लीजिएगा और पतंग बनाने का तरीका सीख लीजिएगा। अब आप अपने बड़ों की सहायता से इसमें डोर लगाइए और खुले आसमान में खुली छत पर पतंग उड़ाइए। लेकिन पतंग उड़ाते समय ध्यान जरूर रखिएगा कि आप बाउंड्री वॉल के पास ना हो, कि आप बहुत ज्यादा छत के किनारे पर न जाएं। और जितनी तेज हवा चलेगी, जितना ढील देंगे आप मांझे को, आपकी पतंग आसमान में उतनी दूर उड़ती चली जाएगी। और आप चाहें तो अपनी पतंग को कई तरीके से सजा भी सकते हैं। अगर आपकी पतंग आसमान में बहुत दूर उड़ रही है और वहां पर आ जाता है एक कौवा या एक चील, तो क्या करेंगे? हो सकता है कि कौवा और चील आपकी पतंग को काट ले, आपकी पतंग की डोर को काट ले। और डोर को काट कर कहां ले जाएंगे? अपने बच्चों के पास। वे कहेंगे, मेरे बच्चे पतंग तो नहीं बना सकते, तो क्यों ना आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों की डोर काटें और अपने घर ले जाएं। तो मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वे भी पतंग उड़ाना सीख जाएंगे। तो बच्चों, ये तो हुई पतंग की बात। यानी मेरा मन करता है कि मैं पतंग बनाऊं और आसमान में उड़ाऊं, लेकिन कोयल का मन करता है कि मैं खुद पतंग बन जाऊं और आसमान में दूर तक उड़ जाऊं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि क्या आप सारे काम सबके साथ कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ काम किसी और के साथ करना चाहते हैं तो कुछ काम आप किसी और दोस्त के साथ करना चाहते हैं। हम अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के काम करना पसंद करते हैं। क्या आप ये बता सकेंगे कि आप कौन सा काम किसके साथ करना पसंद करते हैं? तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करती हूँ और फिर आप अपने मन की बात कहिएगा। तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ने लिखने का काम तो करूं तनु के साथ और घूमने फिरने का काम करूं अपर्णा के साथ। तो आप कहेंगे कि मेरा मन करता है कि मैं शरारतें करूं तनु के साथ और पढ़ाई लिखाई का काम करूं अपर्णा के साथ। यानी आपकी हमारी दोस्त कौन है? तनु और अपर्णा। बस हमारे काम ही तो अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों की दोस्त तो एक ही निकली। आप एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए जिसमें आप एक तरफ लिखेंगे नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे मन करता है। यानी आप अपने किस दोस्त के साथ? मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, झुमकी के साथ, दीपक के साथ, तनु के साथ, आलिया के साथ क्या काम करना पसंद करते हैं। और फिर आप ये देखिए कि आपके दोस्त क्या लिखते हैं। क्या आपके किसी दोस्त ने आपका नाम लिखा? और अगर लिखा तो वे आपके साथ क्या काम करना पसंद करते हैं? अपनी सूची
अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके साथ आपके सभी दोस्त काम करना पसंद करते हैं। और अगर आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं तो फिर यह भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आपके उस दोस्त में क्या खास बात है, कौन से ऐसे गुण हैं, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपके बाकी सभी दोस्त उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों, कविता तो आपने सुनी और कविता का शीर्षक था मन करता है। अब आप सोचिए कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सोचने वाली बात है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? आप कहेंगे कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है क्योंकि उसे सवेरा करना है। अगर वह दौड़ नहीं लगाएगा तो सवेरा नहीं होगा, और अगर सवेरा नहीं होगा तो हम उठेंगे नहीं, और अगर हम उठेंगे नहीं तो हम ये चैनल कैसे सुनेंगे। तो कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है क्योंकि आप सब बच्चे झटपट उठ जाएं, समय से उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर खा पी कर तैयार हो जाएं और बैठ जाएं यह चैनल सुनने के लिए। आपने चिड़ियों का शोर सुना होगा, कभी सुबह तो कभी शाम को। सुबह तो अक्सर मिस कर देते होंगे, उठते जो नहीं है, सोते रहते हैं, घोड़े बेच कर सोते हैं आप सभी। लेकिन शाम को जो चिड़िया शोर करती हैं, ये शोर आपने जरूर सुना होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी, कभी सोचा है क्यों इतनी आवाज करती हैं? चींची चू चू चींची चू चू दिन भर शोर मचाती हैं। और कौवे, बाप रे बाप, अगर उनके सामने कोई भोजन रख दे जमीन पर तो सारे कौवे काऊ काऊ काऊ करते करते वहां आ जाएंगे। अगर किसी एक कौवे को भी ये पता चल जाए कि किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर खाने पीने की कोई चीज रखी है तो एक कौवा शोर मचाएगा, काऊ काऊ काऊ, और उसकी आवाज सुनकर सारे कौवे दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे का मतलब उड़ते चले आएंगे, ठीक है? तो ये कौवे ये जान जाते हैं कि यहाँ खाने पीने का सामान है। कौओं की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि वे मिलजुल कर भोजन करते हैं। लेकिन चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? आखिर चांद तारों पर क्यों अकड़ता होगा? ये कहता होगा कि देखो तुम तो हो छोटे छोटे से, एकदम पिद्दे से, छोटू से, इत्तू से, और मैं हूं बड़ा, इसलिए मैं तुम पर अपनी अकड़ दिखा सकता हूं। लेकिन एक दिन तारों ने आपस में बैठक की और ये कहा, ये चांद जो है अपने आप को बहुत बनता है, अकड़ता है, तो क्यों ना इस चांद की अकड़ निकाल दें। तारों ने सोचा कि चांद की अकड़ कैसे निकालेंगे, हम तो इत्तू से हैं, छोटे से हैं, पिद्दे से हैं और चांद बहुत बड़ा है। तो तारों में एक तारा बहुत समझदार था और इस तारे का नाम क्या था? इस तारे का नाम था उषा। तो उस तारे ने कहा कि तो क्या हुआ अगर चांद बहुत बड़ा है, हम भी तो इतने सारे हैं, हम संख्या में सबसे ज्यादा हैं और चांद अकेला है, तो क्या हम सब मिलकर चांद का मुकाबला नहीं कर सकते?

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
3: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
2: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
3: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम दीपिका शर्मा है। मेरे लड़के को बुखार हुआ था तो हम लोग लेके गए प्राइवेट डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर इलाज हुआ मगर बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले कि हमारे बस का नहीं है, लेके जाओ घर पे।
2: नमस्ते दीदी।
1: तो आशा वाली दीदी आई तो बोली क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? तो हम बोले कि बुखार हुआ है और शरीर सूजता चला जा रहा है। तो बोले कि लेके चलोगे सरकारी हॉस्पिटल पे? तो हम लोग बोले हाँ ले चलेंगे। तो हम लोग लेके गए वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे इलाज हुआ। तो वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको बुखार मस्तक जोर है। एक दिन हम लोग वहाँ पे थे, धीरे धीरे जब इलाज हुआ तो हम लोग को विश्वास होने लगा कि हमारा बच्चा यहाँ से ठीक हो रहा है।
3: ये दस्तक अभियान के तहत आशा जाती हैं हर घर में। उनको चार प्रश्न पूछना होता है कि कोई मरीज बुखार का है कि नहीं है, बुखार के साथ किसी के ILI या सर्दी जुकाम के लक्षण वाले मरीज होते हैं तो उसकी लिस्ट बनाती हैं और उसके विभाग की उसकी जांच करता है, उसकी कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ और भी विभाग है, जैसे पंचायती राज है जिसमें पानी इकट्ठा न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। कई अंतर विभागी जो सहयोग कर रहे हैं उसमें पशुपालन विभाग का भी एक अहम सहयोग है कि पशु जो घर के पास रखते हैं लोग कोशिश करें कि उसको घर से बाहर रखें, तो इस काफ़ी प्रोग्राम में सहयोग हो रहा है। इसके अलावा हमारा जल निगम काम करता है इसमें, जो हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जो सैलो हैंडपम्प हैं उसका पानी लोग ना पिए, पानी से भी ये जल जनित बीमारियाँ हैं ये भी हमारे एक मस्तिष्क ज्वर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो IC के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी इसमें क्रमशः सफलता पा रहे हैं। 3 साल से मस्तिष्क ज्वर इसमें संख्या थी उसे काफ़ी कम हुआ है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमेशा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
3: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
2: केवल माँ का दूध
3: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत,
2: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
3: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जंगल है, आधी रात है,
1: सुनो शारदा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अर्जुन बेटा,

0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम।
4: धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा।
5: ऋषिता, आई एम सॉरी, लेकिन भाई से बढ़के कुछ नहीं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं।

0: प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
6: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
7: टी टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। मैं एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
8: किसने रोका है?
6: सारे

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
6: Hey, suno, suno, suno! सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने, आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म।

0: Television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment.

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग,

0: चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुरू शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।